तक। सो मौसम विच ये बदलाव वेलकम है पतझड़ दे मौसम तो पहला। रेडियो सुरसंगम 94.7 FM ते आओ असीं हुण अज दे प्रोग्राम विच जिन्हां खबरां ते चर्चा करनी है उहदा जिक्र करिए। अमरीका दे प्रेजिडेंट डोनल्ड ट्रंप ने कनेडा नूं झटका देण लई बेलारूस नाल एक वड्डा समझौता पोटाश खरीदण लई कीते जाण दी एक गल जे कीती है। वाइट हाउस के अंदर कुछ मीडिया अदारियां नूं जाण तों बैन कर दिता गया सी। उन्हां विचों कुछ वलों उन्हां दे खिलाफ केस दायर किया गया है, सू किया गया है ते वाइट हाउस के अंदर जाण तों रोकण दे जिहड़े फैसले दे खिलाफ केस दायर किया गया। बैंक ऑफ कैनेडा के गवर्नर का कहना है कि अमरीका के नाल व्यापारक विगड़े हुए माहौल का साड़ी इकनोमिक प्रोग्रेस ते माड़ा असर पै सकता है। कैनेडा दे विच पार्लीमेंट का सैशन शुरू हो गया है ते पहले ही दिन लिबरल पार्टी वालों कैनेडा लेबर कोड विच बदलाव लियाउण लई एक बिल पेश किया गया है, इहदे बारे चर्चा करांगे। विरोधी धिर दे आगू पीयर पोलियाब ने भी पहले दिन बहुत सारे मुद्दों ते चर्चा कीती है, उठाए ने। नाल ही वो कहिंदे ने कि कैनेडा यूरोपियन यूनियन की कदे भी 28वीं स्टेट नहीं होगी। स्टैटिस्टिक्स कैनेडा दे एक सर्वेक्षण तो पता लगता है कि चार विचों एक कनेडियन अन अफोर्डेबल हाउसिंग विच रह रहे ने। CAE एक कैनेडा की कंपनी है जो फ्लाइट सिमुलेटर सिस्टम बनाती है, उसनू US दी एयरफोर्स के नाल 300 मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट मिलया है, बावजूद इसते कि ट्रंप कह चुके ने कि कैनेडा दे नाल कोई अमरीका दियां सरकारी संस्थावां दा जां अदारियां दा व्यापारक लैण देण नहीं होवेगा। क्रिकेट खेड दे नूं लै के कैनेडा दे विच बहुत सारा माहौल विगड़िया ते वड्डियां वड्डियां खबरां करप्शन एक्सटॉर्शन ते होर बहुत सारी चीज़ां दी चर्चा होई ते हुण क्राउन ने क्रिकेट कैनेडा दे साबका CEO खिलाफ केस वापस ले लिया है। रजाइना दे लागे एक हवाई हादसे विच दो भारती सिखांदरू पायलटां दे मरे जाण दी खबर है। ओंटेरियो सरकार वालों ट्रक ड्राइवरां दी सिखलाई नूं लै के वड्डा ऐलान कीता गया। सूबे विच कमर्शियल ट्रक ड्राइवरां लई नवां स्टैंडर्डाइज्ड प्रोग्राम जो कि लाजमी किया जाएगा, इस दे बारे असी जानकारी आप जी नाल प्रोग्राम विच सांझी करांगे। कंजर्वेटिव लीडर पीयर पोलियाब नूं अपनी पार्टी के अंदरों ही विरोधी सुरों का सामना करना पै रहा है क्योंकि उन्होंने एक उम्मीदवार आउंदी बाई इलैक्शन वास्ते चुनिया ते नॉमीनेशन ना करवा के उसनू हैंडपिक किया गया। इस नाल कुछ नाराजगियां हन। इलैक्शनज अलबर्टा वाले रेफरेंडम की तैयारी विच खूब लगे हुए ने ते लोकेशन जड़ियां पोलिंग स्टेशन दियां ने ओ शेयर कीतियां जा रही ने। नवा एडरी हैल्थ सेंटर बनाया जाएगा जिथे के काफ़ी अपग्रेडेड सर्विसेज जड़ियां ने ओ इलाका वासियां नू मुहैया करवाईयां जाणगियां। ये खबरां ते कुछ होर जे समा होया समय ने इजाजत दित्ती तां ओ भी आप जी नाल साझिया करांगे जी।

0: एक दिल की सिर्फ गलत फहमी है, बट स्टिल हमें उसका मुकाबला तो करना ही है. तो जो भी हमें इस समय मौसम मिल रहा है उसको भरपूर इंजॉय करें, बाहर निकलें और बच्चों को लेकर जाएं, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ बाहर निकलकर जितना इंजॉय कर सकते हैं करें, और जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उनका मजा लें, उनके अंदर जरूर शिरकत करें ताकि आप ये इवेंट्स को इंजॉय कर सकें और उनका हिस्सा बन सकें. इवेंट्स की बात कर रहे हैं तो हमारे इस कैलगरी शहर में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक बहुत ही अहम सर्विसेज जो है वो बच्चों तक पहुंचाती है. कहा जाता है कि टू गिव द गिफ्ट ऑफ एजुकेशन इज द बेस्ट गिफ्ट यू कैन एवर गिव टू एनीवन. आप आशीर्वाद और जो जैसे दुआ बोलते हैं और साथ में एजुकेशन अगर आप किसी को देते हैं तो वो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा गिफ्ट होता है. उससे बड़ा गिफ्ट है कि उन लोगों तक, उन बच्चों तक वो एजुकेशन पहुंचाना जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई वे नहीं है स्कूल्स तक जाने का. तो इन बच्चे ही हैं मेरे सामने, इन बच्चों ने उन बच्चों के लिए स्कूल उनके घर तक पहुंचा दिया, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है. उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है तकमील. तकमील का नाम क्यों पड़ा या उसका असली मतलब क्या है और ये जो ऑर्गेनाइजेशन वो क्या करती है उसके बारे में हम लोग आज बातचीत करेंगे. और उनका फिफ्थ बैंक्वेट जो है एक प्रोग्राम होने जा रहा है जिसके अंदर वो लोग स्पॉन्सरशिप्स और बहुत सारी चीजें जो उन बच्चों को चाहिए उसके बारे में बात करते हैं और आपकी मदद की जरूरत होती है ताकि आप लोग उन बच्चों को अडॉप्ट करें, उनकी एजुकेशन के लिए हेल्प करें. तो उसके लिए एक प्रोग्राम रखा जा रहा है जो कि 2 अक्टूबर को है. तो उसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं साइमा जी, जैनब जी और सना जी. आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये क्या प्रोग्राम है. आप सबका बहुत बहुत स्वागत हमारे प्रोग्राम में.
1: बहुत शुक्रिया अमृत भाई कि आपने हमें दोबारा मौका दिया और हम आज आपके साथ मौजूद हैं और तकमील के मिशन के बारे में बात कर सकते हैं और आने वाले इवेंट के बारे में बात कर सकते हैं. वी हैव वंडरफुल अपडेट्स फॉर द इवेंट.
0: क्या बात है जनाब, मैं आपको बहुत सालों से जानता हूँ, आप इतनी मेहनत से काम करती हैं, आपकी पूरी टीम साइमा जी और अगर हम सैयद साहब की बात करें वो पूरे दिल से लगे रहते हैं इस काम को लेकर. एक बहुत हिम्मत की बात है इतने सारे बच्चों को इतनी, चाहे आप एक मिनिमम एजुकेशन दे रहे हैं टू स्टार्ट विथ, लेकिन उनका एक सपना जो है कि भाई मैं भी पढ़ूं, मैं भी किसी स्कूल में जाऊं, चाहे वो स्कूल एक कमरे में ही बना हो, लेकिन आप आपने वो सपना उनके लिए क्रिएट किया. आप उनके लिए सेंटा क्लॉज भी हैं, आप उनके लिए एक ऐसा सेंट है जिन्होंने उनको ये सपना चुनका है वो साकार करवाया. और स्पेशली ऐसी जगहों पे जहां पर, मैंने अभी दोस्तों में वो जगह का नाम लेना चाह रहा था लेकिन मेरे मुंह से उसकी प्रोनाउंसिएशन ही निकल रही थी, तो वो इस तरह के रिमोट एरियाज हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर जहां पर लोग बच्चों ये जो है एजुकेशन ले रहे हैं. पहले जैनब ये बताएं तकमील का मतलब क्या होता है.
1: तकमील का जब नाम सोचा जा रहा था 2017 में, शायद कमर भाई हैं हु इज द फाउंडर, बहुत सारी थॉट इसके अंदर डाली गई, तो हमने ये सोचा कि हम एक ऐसा नाम जो है लेकर आए इस मिशन के लिए जो रेजोनेट करे हमारी उर्दू जबान में भी और इंग्लिश में भी. तो तकमील का वैसे एक इट स्टैंड्स फॉर टीच अ किड मेक इंडिविजुअल लाइफ, कि आप एक बच्चे की जब जिंदगी बना देते हैं तो आगे आने वाली तमाम नस्लें जो हैं वो उस रास्ते पे गामजन हो जाती हैं. उर्दू में इसके मानी है टू फुलफिल समथिंग, टू कंप्लीट समथिंग, किसी चीज का मुकम्मल होना.
0: अच्छा.
1: और जब आप किसी को तालीम का मौका देते हैं तभी आप उनको अपनी जिंदगी भरपूर तरीके से और मुकम्मल तरीके से जीने का मौका देते हैं. इसके पीछे काफी थॉट दी गई कि हम तकमील का जो नाम है उसको उसके मिशन के साथ, पर्पस के साथ अलाइन करें. हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम दुनिया में एक ऐसे मुल्क में, एक ऐसे शहर में हैं जहां पर हम अपने लिए अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो देख सकते हैं और अपने बच्चों के लिए. अभी सेप्टेम्बर में बैक टू स्कूल, सारे जो पेरेंट्स हैं उनकी एक्साइटमेंट होती है कि अब समर वेकेशन खत्म होगी और बच्चे दोबारा स्कूल में जाएंगे, नए ग्रेड्स में जाएंगे. लेकिन एक लम्हे के लिए सोचें कि हमारे पास जो भी ये ब्लेसिंग्स हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, ये हमें दी गई हैं, हमें मिली हैं. अगर हमें वो ना मिलती, अगर हम ऐसे किसी गांव में होते जहां पर सदियों से तालीम नहीं है और वहां पर हमें मौका ना मिलता, तो आज हम अपनी जिंदगी में कहां होते. तो तकमील का मकसद पाकिस्तान में उन करोड़ों बच्चों तक तालीम पहुंचाना है जो ऐसे छोटे छोटे गांव में हैं जहां पर

0: कोई भी तालीम का तस्वर नहीं है, लेकिन हम एक ट्रेडिशनल तरीके से नहीं जा रहे, हम वहां पर एक ऐसे तरीके से जा रहे हैं जो कि उनकी जरूरियात के मुताबिक और उनके लाइफस्टाइल के मुताबिक हो। हम जानते हैं कि वहां पर जिंदगी की बुनियादी जरूरियात तक नहीं है, पानी तक नहीं है, बिजली नहीं है, इंटरनेट नहीं है, वहां पर कोई बिल्डिंग्स नहीं है, वहां पर सहराई इलाके हैं, तो वहां पर हम कैसे तालीम दें। तो हमने यही सोचा कि हम इसको एक ऐसे इनोवेटिव तरीके से पहुंचाएं कि हम इसमें टेक्नोलॉजी की मदद से और कम्युनिटी की मदद से हम तालीम दें। तो हमने तीन चीजों के ऊपर काम किया तकमील में कि एक हम एक ऐसा निसाब बनाए, करिकुलम बनाए, जो कि एक ऐसा बच्चा कभी जिंदगी में स्कूल नहीं गया, कम अरसे के अंदर वो ग्रेड 5, ग्रेड 6, 7, 8 की तालीम हासिल कर ले। सो एक ऐसा बच्चा जो कि 11 साल का है, 12 साल का है, 3 साल के अरसे में वो ग्रेड 8 मुकम्मल कर सकते हैं। फिर कि जितनी भी तालीम है वो टेक्नोलॉजी की मदद से दी जा रही है और वीडियो लेसन्स के जरिए से डिलीवर की जा रही है। अभी तक की जो हमारी जर्नी है, 5000 के करीब बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल कर चुके हैं और कुछ हासिल कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे बच्चे जो हमारे स्कूल से ग्रेजुएट किए हैं वो अब आगे अपनी हायर एजुकेशन कंटिन्यू ऑन कर रहे हैं, एंड 150+ विलेजेस अक्रॉस पाकिस्तान में हमारी प्रेजेंस है। लेकिन इस मिशन की खूबसूरती ये है कि अब इस मिशन के अंदर मजीद लोग शामिल हो रहे हैं। कैलगरी की कम्युनिटी 5 साल से इस मिशन को सपोर्ट कर रही है, लेकिन वी हैव 17+ चैप्टर्स अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका जो इस मिशन का हिस्सा है।
1: वर्ड्स खत्म हो गए, आपने इतनी अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन किया, मैं शायद जिंदगी में कभी नहीं कर पाऊं। दैट इज सो ब्यूटिफुल। साइमा जी, अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा यहां पर। इस समय जो मैं आंकड़े देख रहा हूं, 26 मिलियन किड्स जो इस समय पाकिस्तान में हैं, कहा जाता है कि दे आर स्टिल यू नो
2: आउट ऑफ स्कूल।
1: आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें इन एरियाज में जाना है? देखिए, क्योंकि रिमोट एरियाज तो बहुत है, राइट, और शायद बच्चे जो हैं वो मेन सिटीज, लाहौर हो गया, कराची हो गया, वहां पर भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना, लेकिन आप उनको ही क्यों मेन आपका फोकस रहता है?
2: इसलिए कि वो बच्चे हैं पाकिस्तान के, इस टाइम तकरीबन 3 करोड़ बच्चे जो हैं उनके पास तालीम हासिल करने का कोई सिंगल मौका मौजूद नहीं है। जो बच्चे शहरों में रह रहे हैं उसकी वजह यह है कि बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, बच्चे सड़कों पे कोई गुब्बारे बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन उनके पास सोर्सेज हैं। शहरों में एटलीस्ट स्कूल होते हैं, दे हैव डिफरेंट रीजन फॉर नॉट गोइंग एंड ज्वाइनिंग द स्कूल।
1: जी,
2: और लेकिन जो बच्चे बहुत दूर दराज के गांव में रहते हैं, उसमें गांव में आप देखें तो उस गांव को एक पक्की सड़क भी नहीं जाती, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं जाता, उस गांव के अंदर बिजली का कोई निजाम नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी नहीं है, सीवरेज, तो ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। और उसमें ऐसे भी गांव हैं अमृत साहब जिसमें लोगों के पास डेटाबेस ही नहीं है, वो बच्चे वो लोग पाकिस्तान की पॉपुलेशन में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते,
1: मतलब कि उनका नाम ही कहीं, जैसे कहा जाता है ना कि उनका कोई आधारित कार्ड ही नहीं है जहां उनके नाम पे।
2: जी
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
2: AI के दौर में भी वो बच्चे इस यूनिवर्स में, इस दुनिया के अंदर उनका कोई नाम, कोई आइडेंटिफिकेशन है ही नहीं। अब हम कैसे, तकमील कैसे आइडेंटिफाई करता है? वी कीप टॉकिंग टू द पीपल। जैसे मैं खुद पाकिस्तान के बहुत ही एक पसमानदा चोलिस्तान से, जो आपका पूरा सहरा है, डेजर्ट है
1: जी,
2: तो वहां से हूं। अब हमें पता होता है कि कहां पर जाके सर्वे करना है। तकमील की टीम है, हम लोगों से, लोकल लोगों से कनेक्ट करते हैं जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं एरिया में, वहां पर हम देखते हैं कि कितने किलोमीटर में कोई स्कूल मौजूद है। पहले तो
1: अच्छा,
2: अगर 3 या 5 किलोमीटर के रेडियस में कोई स्कूल है तो वी विल सी कि यहां पर कितने बच्चे जा रहे हैं, कितने टोटल बच्चे हैं, कितने बच्चे अभी भी घरों में बैठे हैं और नहीं जा रहे तो किस रीजन से नहीं जा रहे। तो तकमील की पहली तो कोशिश ये होती है कि तकमील का स्कूल बने ही वहां पर जहां पर 3 से 5 किलोमीटर के रेडियस में कोई स्कूल मौजूद नहीं है। अगर स्कूल है तो इनकरेज करते हैं लोगों को कि उसी स्कूल में बच्चों को भिजवाया जाए। फिर इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ मिलकर पूरा सर्वे होता है कि इलाके में बच्चे कितने हैं और किस किस रीजन से स्कूल नहीं जा रहे। अच्छा, अब जो दूर दराज के गांव है वहां पर स्कूल ना जाने की वजह यह है कि बच्चे सारा दिन या तो खेतों में काम करते हैं, जब सारा दिन गलियों में फिरते रहते हैं, पानी जी देयर इज नो ऑप्शन, और ऑप्शन से ज्यादा ना उनके पास अवेयरनेस ही नहीं है कि सुबह उठ के स्कूल जाना है,
1: स्कूल भी जाना है,
2: वो कॉन्सेप्ट नहीं है। वो सुबह उठते हैं, पानी भरने कोई चला गया, कोई बकरियां चराने चला गया, जानवर चराने चला गया, कोई किसी वडेरे के पास काम करने चला गया या खेतों में काम करने चले गए। तो उन लोगों को जमा किया जाता है, उनसे बात की जाती है, पूरा तकमील की टीम जो है लोकल लोगों के साथ कनेक्ट करके पूरा एक सर्वे और पूरा डाटा बेस बनाया जाता है। When everything is aligned, फिर हम उसको स्कूल समझ के एक अस्यूम करके फिर स्पॉन्सर ढूंढते हैं, क्योंकि स्कूल खोलना ही मकसद नहीं है। कोई चीज शुरू करना आसान होता है, लेकिन उसको कंसिस्टेंट रखना जो है ना,

0: वो सबसे
1: वो बहुत मुश्किल है। स्कूल शुरू हो गया, स्कूल में 25 से 30 बच्चे आ गए। बच्चे एक बहुत बड़ी उम्मीद लेके आते हैं और बच्चों से ज्यादा उन बच्चों के माँ बाप जो ये देख रहे होते हैं कि हमारा बच्चा अब फोन जो देखेगा या कोई चीज जो देखेगा या कोई न्यूज़पेपर देखेगा तो वो उसको पढ़ सकेगा। फील द एक्साइटमेंट ऑफ दोज पेरेंट्स जो बच्चों को तकमील के पास, ऐसे बच्चे भी आते हैं जो 4 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं और जिनके माँ बाप भी उनको लेके आते हैं
0: जी
1: पैदल चल के या साइकिल के ऊपर। तो आप देखें सड़क भी नहीं है, पगडंडी पे साइकिल ने आना है, मौसम भी अच्छा बुरा रहता है, भूख प्यास भी होती है, वो लोग माल न्यूट्रिशन है, कोई रिसोर्सेज नहीं है। तो उस स्कूल को कंसिस्टेंट रखना, उसके लिए स्पॉन्सर ढूंढना, फिर हर साल उस स्पॉन्सर को कनेक्शन में रखना, उसको अपडेट देना कि ये बच्चे हैं आपके स्कूल में जो रजिस्टर्ड है, ये यहां तक पहुंचे हैं, पहले इस ग्रेड में थे अब इसमें हो गए हैं। अच्छा, और सबसे अच्छी बात यह कि तकमील के जो बच्चे कुछ लेवल्स क्रॉस कर जाते हैं वो छोटे लेवल्स के बच्चों को पढ़ाना भी शुरू कर देते हैं। सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर केप्ट इन द साइकिल एंड कंसिस्टेंट। सो फ्रॉम स्टार्टिंग द बिगिनिंग के सर्वे होता है, उससे नीड एनालिसिस होती है, रिसोर्स प्रोवाइड किया जाता है और फिर उसको आगे हम चालू रखते हैं।
0: क्या बात है सना, आप कब से जुड़ी इस ऑर्गेनाइजेशन से?
2: लास्ट ईयर से
0: जुड़े
2: जी।
0: तो जब से आप जुड़े तो क्या महसूस किया आपने कि एज एन इंडिविजुअल, एज अ आप भी पढ़ रही हैं और आपने भी पढ़ाई करी है, तो आप कह सकते ना कि आप प्रिविलेज्ड हैं। मुझे लगता है कि अगर हमें पढ़ाई मिल रही है हम लोग वैसे ही प्रिविलेज हो गए। What do you think about that?
2: जी बिल्कुल, मेरा जैनब बाजी से तो कनेक्शन इज लाइक कि जब मैं यहाँ आई थी तब से, मतलब एक हम मिलते रहते थे इवेंट्स में, बट तकमील में मैं लास्ट ईयर से लाइक एक ऑफिशियल तरीके से ज्वाइन हुई थी। और जब से मैं वहां ज्वाइन हुई थी इट वाज लाइक कि जब मैं देखती हूँ ना कि हम, मतलब कि अगर मैं अपनी बात करूं एज एन इंडिविजुअल, कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं बहुत प्रिविलेज थी कि मुझे जो बेसिक एक नेसेसिटी होती ना एजुकेशन, वो मुझे मिली बगैर किसी स्ट्रगल के। और अल्हम्दुलिल्लाह लाइक मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया, यूनिवर्सिटी कंप्लीट की, फिर ऑफकोर्स मैं इधर मास्टर्स कंप्लीट करने आई अपना।
0: एक मिनट, तो इतनी बड़ी हो गई तुम? अरे ये बच्चा तो लगता ही नहीं कि इतना बड़ा हो गया है। मुझे लगा कि अभी ये 10वीं 12वीं बच्चा पढ़ रहा है और आपके साथ जुड़ गया, फिर मास्टर्स कर रहे हैं भैया, मेरे को तो जन्म लग जाएगी इतना कुछ करने में। क्या बहुत बढ़िया,
2: थैंक यू। तो वही होता है कि जिस तरह, मतलब अल्लाह का शुक्र है मैं अपना मास्टर्स भी कम्प्लीट किया। तो ये जो मैंने सब कुछ कम्प्लीट किया, ऑफकोर्स में स्ट्रगल थी लेकिन एक मुझे एक चांस मिला। और वही अगर मैं सोचूं, जब ऑफकोर्स मैं जब यूनिवर्सिटी में अपनी होती थी बैचलर्स में, तो मैं ये सोचती थी, मैं देखती थी ऑफकोर्स कराची में भी ऐसे स्लम एरियाज होते थे जहां पे यू नो बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलती थी। तो मुझे होता था कि यार हम वाकई अल्लाह का बहुत शुक्र कि हम बहुत प्रिविलेज हैं इसमें, और अगर मैं उनके लिए कुछ कर सकती हूँ यू नो, सिर्फ कि हम उनके लिए एक अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं या कि हम एक लीडरशिप ले सकते हैं, जैसे कि मैं जैसे तकमील में एक यूथ के रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो हम जो यूथ है वो एक तरीके से अब आने वाली नस्लों के लिए यू नो एक वो है कि लाइक हम उनके लिए एक ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। तो हमारा यही काम है कि हम एक अवेयरनेस पैदा करें, हम एक लीडरशिप लेकर आए अपनी टीम के अंदर। और बिल्कुल इस तरह यूथ, जो अगर मैं तकनील की बात करूं तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक गांव लिया यूथ ने, मतलब कि मेरे साथ और भी थे, मतलब 11 to 12 लोग, और उन सब ने मिल के हमने एक गांव लिया और उसमें लाइक अराउंड 30 to 35 बच्चों को तालीम मिल रही है। तो इट वॉज लाइक $11 पर चाइल्ड। तो मतलब $11 तो बिल्कुल आप ऐसा माने कि जैसे 2 कॉफी के हमारे हैं जो हम यूजली पी करते हैं। तो एक ये जो अब की मैं यूथ देख रही हूँ माशाल्लाह से, वो बहुत अवेयर है, वो यू नो सवाल करती है, वो पूछती है कि अच्छा हम क्यों ज्वाइन करें, किस लिए ज्वाइन करें, एंड यू नो इसमें क्या हो रहा है। तो फिर बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बहुत अच्छा कॉज है और एज अ यूथ मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं इस मिशन का हिस्सा हूँ।
0: क्या बात है जनब, मैं भी एक, हमारी भी एक फाउंडेशन है, तो जैसे मैंने आपसे भी जिक्र किया था कि हमारे पास भी अराउंड 45 बच्चे हैं इस समय जिनको हम इंडिया में एजुकेशन देते हैं। बट हमारा एजुकेशन जो है वो एक डिफरेंट तरह का है, हम उन बच्चों को चूज करते हैं जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और जिनके माँ बाप सोचते हैं कि उनको जॉब आगे नहीं मिलेगा, सो वी ट्राई टू एजुकेट देम इन अ डिफरेंट वे और उनको हम सेल्फ सफिशिएंट बनाते हैं ताकि वो टेलरिंग सीखें, कुछ और सीखें, ताकि आगे चल के एटलीस्ट वो मोहताज ना बने। कल कई बच्चे हैं जो थोड़े मेंटली स्लो हैं तो उनको हम लोग हेल्प करते हैं, लेकिन मेन चीज है उनको कॉन्टिन्यूसली हेल्प करना। जैसा सना जी ने कहा कि, और सहमा जी ने कहा कि मेन चीज है उनको आप एज अ आप अपने वे से एक एम्बेसडर बने उनके लिए ताकि वो

0: बहुत बढ़िया। तो हम बात करते हैं अब जो आपका फिफ्थ ये सिक्स होने जा रहा है, आपका ये फिफ्थ होगा ना, तो फिफ्थ प्रोग्राम होने जा रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं, ये कहाँ होने जा रहा है, क्या इसके पीछे क्या आपका मकसद है और क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोगों से प्लीज।
1: जी अमित भाई, जैसा आपने मेंशन किया, ये कलेक्टिव एफर्ट्स ही हैं। और कैलगरी के चैप्टर को जब मैं रिफ्लेक्ट बैक करती हूँ तो वो भी दिन था जब हमने पहला अवेयरनेस बूथ लगाया था एक पार्क के अंदर। उस वक्त जो है 2-3 लोग थे और अब अल्लाह का शुक्र है एक पूरी कम्युनिटी है जो कि मिलकर इस मिशन को सपोर्ट कर रही है। हमारा अब ये फिफ्थ हाफ अ डेकेड एक तरह से मुकम्मल।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: फिफ्थ एनुअल इवेंट इज ऑन October 2nd फ्राइडे है ये, और सुल्तान बैंक्वेट हॉल में ये इवेंट होने जा रहा है। इस इवेंट की 3 खासियत है। हर साल जब हम अपना इवेंट करते हैं तो उसका एक हिस्सा जो होता है वो इस चीज के ऊपर होता है कि जिस मिशन को कैलगरी की कम्युनिटी सपोर्ट कर रही है उसके आउटकम क्या है। किसी भी नॉन प्रॉफिट की इम्पैक्ट जो है वो सबसे ज्यादा मानी रखता है और उन लोगों को जो उसके सपोर्टर्स हैं उसके साथ जुड़े रखता है। सो फर्स्ट थिंग इज के ऑफकोर्स द मेन एजेंडा इज के पीपल कम, दे लिसन टू द स्टोरीज, जो सक्सेस स्टोरी
0: जो पिछले 4 साल में हुआ है वो क्या हुआ है।
1: जो विलेजेस जिससे पहली बार मौका मिला कैलगरी की सपोर्ट के जरिए से, वो बच्चे ग्रेड 8 करके ग्रेड 9 में आगे मूव ऑन कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, तो एक पूरी ट्रांसफॉर्मेशन हुई।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो ये एक तो पहला एजेंडा है। द सेकंड इज के हर साल हमारे इवेंट में यूथ जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और वी आर इनक्रेडिबली प्राउड ऑफ देम। इस साल हम बहुत ही मजेदार एक हॉट टॉपिक लेकर आ रहे हैं डिबेट एंड ड्रामा के लिए। हमने इसको जरा डिबेट से जरा निकल के जरा ड्रामेटाइज स्टाइल में हम इसको प्रेजेंट करेंगे। आपके सोशल फीड में रोजाना ये डिस्कशन हो रही होगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ जा रही है, वेयर इज इट हेडिंग। डीप फेक की अगर हम बात करें, क्या AI इवेंचुअली जो है वो ह्यूमैनिटी को टेक ओवर कर लेगी। बहुत सारी साईफाई मूवीज है जो कि ऑलरेडी इस चीज के ऊपर हिंट कर रही है।
0: टर्मिनेटर सबसे बड़ी है।
1: जो AI है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, द रिस्क एंड कंसर्न जो उसके साथ हैं, इवेंचुअली ह्यूमैनिटी जो है वो वैनिश हो जाएगी। अब ये सारे कंसर्न हमारे सामने ही है। जो जॉफ्री हिंटन, ही इज अ नोबेल लॉरियट, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही उनको सबसे बड़ा अवार्ड मिला, उन्होंने ही वार्न करना शुरू कर दिया कि भाई AI जो है इट्स गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल एंड वी हैव टू बी वेरी ऑफ इट। तो एक सिंथ हमारी टीम है यूथ की जो बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस को लेकर आ रही है कि बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस की नीड है, विदाउट बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस AI भी सर्वाइव नहीं कर सकती। AI की जो टीम है वो कह रही है कि AI इस हद तक ऑटोनोमस हो जाएगी कि चाहे हेल्थ केयर की फील्ड हो, चाहे जो है कोई और फील्ड हो, उन तमाम फील्ड्स में इतनी एक्सेल कर जाएगी कि मे बी बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस को टेक ओवर कर ले। बट द आइडिया इज के हम अपनी यूथ को आने वाले 5-10 सालों के लिए तैयार करें। वी हैव टू प्रिपेयर देम फॉर व्हाट्स टू कम, नॉट वेयर वी स्टैंड टूडे। तो दैट्स द मेन आइडिया कि हमारी कम्युनिटी में पहली बार एक ऐसी डिबेट हो रही है जिसमें हम अपनी कम्युनिटी को एक ग्लिम्स दिखा रहे हैं, एक झलक दिखा रहे हैं फ्यूचर की जो आ रहा है और जिसके लिए हमें तैयार
0: होना।
1: थर्ड एंड वेरी एक्साइटिंग थिंग इज गजल परफॉर्मेंस। हमने ये कोशिश की कि हमारी कम्युनिटी में जो लोग जो है वो AI वाली साइड या बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस वाली डिस्कशन का हिस्सा बनना चाहे, दे शुड कम। फिर हमारे पास ऑफ कोर्स इट्स अ वंडरफुल डिनर एज वेल, और डिनर के बाद हमारे पास एक गजल जो है परफॉर्मेंस होगी लाइव। इमरान मेहदी हसन साहब जो है वो आ रहे हैं और वो बेटे हैं बेसिकली उस्ताद मेहदी हसन के।
0: क्या बात।
1: और उस्ताद मेहदी हसन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एवरीवन नोज देम। तो आखिर में जो शाम का इख्तिताम है हम इसके ऊपर करेंगे और अपनी कम्युनिटी को एक बहुत ही वंडरफुल एक पैकेज इवेंट देंगे।
0: क्या बात है। तो किस दिन होने जा रहा है उसके बारे में बता दें, दूसरा कहाँ होने जा रहा है और तीसरा हाउ टू बी पार्ट ऑफ इट, लाइक अगर ये टिकटेड है तो टिकट वगैरह कहाँ से लिए जाए।
1: मैं साइमा से कहूंगी कि वो मजीद इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर।
2: जी थैंक यू जैनब। तकमील का इवेंट सुल्तान बैंक्वेट हॉल में होगा October 2nd
0: जी,
2: शाम को 6 बजे, 6:00 इन द इवनिंग। $60 इज द टिकट, और टिकट में जैसे जैनब ने बताया बहुत ही एंटरटेनमेंट वाली चीजें भी हैं, डिबेट एंड द म्यूजिक नाइट, एंड देर इज एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक काइंड ऑफ डिनर भी इंक्लूडेड है जो अच्छा मेन्यू है उसका बहुत।
0: जी, जी, जी,
2: तो बहुत अच्छी शाम रहने वाली है। दोबारा मैं बता दूं कि October 2nd शाम को 6 बजे एट सुल्तान बैंक्वेट हॉल, आप ऑनलाइन takmeel.org पे टिकट ले सकते हैं। आपसे कोई राब्ता कर सकते हैं, अमृत जी, जैनब से, हम में से किसी से भी राब्ता कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत मटेरियल पड़ा है, कहीं पे भी जाके एक क्लिक पे टिकट बाई हो सकता है, इट्स दैट इजी। और जो लोग डोनेट करना चाहेंगे उनके लिए मेरे पास मैसेज ये है कि इट्स जस्ट $11 पर चाइल्ड,

0: पर मंथ। तो मेरी रिक्वेस्ट है पूरी कम्युनिटी से कि आप रिगार्डलेस होके कि आपके हालात क्या चल रहे हैं, वी ऑल नो यहाँ पर भी थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम है लोगों के लिए मोस्टली, लेकिन देखें कि दो कॉफी के कप पे गिव अप करना इन अ मंथ इज नॉट अ बिगर थिंग फॉर एनी ऑफ अस। $11 एक बच्चे के, आपके $11 किसी की जिंदगी बदल सकते हैं, सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल की नहीं, उसकी आने वाली सात नस्लों की। तो वो $11 हम सब आराम से निकाल सकते हैं, थिंक अबाउट दैट। और एक फैमिली मिलकर एक स्कूल स्पॉन्सर कर सकती है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि तकमील इज रजिस्टर्ड चैरिटी अंडर CRA। कोई भी बंदा जो भी डोनेशन देगा तो उसको 45% उसका अमाउंट जो है वो CRA रीइंबर्स कर देगा। तो देखें आखिरत में जाकर तो 70 गुना मिलना है, दुनिया में भी 50% तो वापस आ रहा है। और अगर वो आप डोनेशन में नहीं देते देन CRA विल डिडक्ट मोर टैक्सेस फ्रॉम माई इनकम। क्योंकि अगर मेरे पास इनकम है 50,000 की, मैं उसमें से 3,000 चैरिटी नहीं कर रही तो 3,000 पर टैक्स कट जाएगा उतना, तो मुझे 900,000 तो चैरिटी कर देनी चाहिए। ठीक है, आप $100 दें डोनेशन में, 45 आपको CRA देगा, आगे आपके 150 पहुंच गए, आपके जेब से सिर्फ कितने गए $55। तो आपको टैक्सेबल रिसीट तकमील भेजेगा जो भी आप डोनेशन देंगे, $11 दें, $1,100 दें या $11,000 दें, तो इट विल वर्क फॉर यू टू, आपकी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करेगा।
1: क्या बात है। सो दोस्तों आपने सुना हमारी तीनों बहनों से यहाँ पर कि 2 अक्टूबर को ये प्रोग्राम होने जा रहा है, तकमील का 5th एनुअल फंक्शन इवेंट, जहां पर सारी चीजें आपके सामने है, किस तरह से प्रोग्राम आपके लिए आएगा और क्या क्या चीजें उसमें होने वाली हैं। आपको डेफिनेटली इसका हिस्सा बनना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना हो सके आप इसके अंदर बच्चों को सपोर्ट करें, अपनी टीम को, ये पूरी टीम को सपोर्ट करें, ताकि ये लोग आगे जाकर वो बच्चे जो हैं जो कि इन रेगुलर जो कि एक आम चीजें हैं, आम सर्विसेज हैं, उनसे भी मोहताज हैं, उनको ये पहुंचा सकें। सो वी शुड सपोर्ट देम, सो प्लीज कम आउट इन बिग नंबर्स एंड प्लीज ज्वाइन देम ऑन 2 अक्टूबर सुल्तान बैंक्वेट हॉल के अंदर। तकमील आपके लिए लेके आ रहा है 5th एनुअल इवेंट, जिसके अंदर म्यूजिक है, डिबेट है, ड्रामा है और साथ में बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको जरूर जाननी चाहिए। When you will meet them in person, आपको डेफिनेटली लगेगा कि आप कुछ अच्छा काम ही कर रहे हैं। Whatever you can donate, please do donate. हमारी पूरी तरफ से, टीम की तरफ से आपके लिए यही गुजारिश है। So before we end today's program, Zainab, last के 30 seconds क्या कहना चाहेंगे आप?
2: मैं यही कहूंगी कि हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें मानी रखती हैं, but that पहला मौका जो हमें लिखने का पढ़ने का मिला, that is the most meaningful and defining one.
1: क्या?
2: और इस मिशन को सपोर्ट करने से आप किसी को पहला मौका गिफ्ट कर रहे हैं, तो दैट इज समथिंग जो कि जब तक वो मौका आगे उन नस्लों को भी मिलता रहेगा, आपको भी सदका जारिया जो है वो उस पर रिटर्न मिलता रहेगा। तो आई थिंक एक ये बहुत खूबसूरत गिफ्ट है जो हम किसी को दे सकते हैं, तो ये एजुकेशन का गिफ्ट जो है इस मिशन में शामिल हो और हमारे साथ शिरकत करें ऑन 2 अक्टूबर एट सुल्तान बैंक्वेट हॉल।
1: क्या बात है सना, आप कुछ कहना चाहें?
3: हाँ, मैं भी बस यही कहना चाहूंगी कि ये एक बहुत ही अच्छा इवेंट है, इसमें बहुत एक बहुत हमारा सेगमेंट जो यूथ वाला सेगमेंट है वो भी बहुत अच्छा है, ऑफ कोर्स के साथ गजल नाइट भी है, तो बिल्कुल शिरकत करें। एंड हाँ, मतलब कि बस ये है कि एक हम आज जो जिस पोजीशन में है, मुझे लगता है कि अल्लाह ने हमें वो एक दिया है कि हम दूसरों की मदद करें, तो बिल्कुल मतलब कि जरूर आए, हमारा साथ दें इस मिशन में, ये मिशन आप लोगों के बिना पॉसिबल नहीं है, तो जब सब जुड़ेंगे तभी सब आगे बढ़ेंगे। तो
1: दोस्तों मैं यही कह सकता हूं, योर सपोर्ट कैन ब्रिंग अ चाइल्ड फ्रॉम जीरो लिटरेसी टू अ ब्राइटर फ्यूचर। तकमील आपके लिए यही मैसेज देता है, तो प्लीज आप पहुंचें बड़े नंबर में और इस प्रोग्राम को बहुत ज्यादा तादाद में अटेंड करें और इसको कामयाब बनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो सुरसंगम मूलिया 94.7 FM पर। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, जाइएगा नहीं, सुनते रहिए रेडियो सुरसंगम ऑन 94.7 FM पर।
4: कैनेडा विच रहदिया इंश्योरेंस की बहुत अहमियत है, किसी भी तरह की इंश्योरेंस ले पंजाब इंश्योरेंस दे रीजनल मैनेजर हरपिंदर सिद्धू नाल आज ही संपर्क करो। सुपर वीजा, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, RESP दिया वधिया सेवावां लई पिछले लंबे अरसे तो कैलगरी विच जानिया पहचानिया नाम है हरपिंदर सिद्धू। ए इंश्योरेंस ले नामवर कंपनियां नाल काम करदे हन। होर जानकारी ले पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिद्धू नाल 403-404-3500 ते संपर्क करो।

0: जी हां मोटर कार का तो मालूम नहीं लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुंचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज वो रेजिडेंशियल हो कमर्शियल हो प्राइवेट हो फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर मयंक भटनागर जी 647-702-2023-647-702-V-DEI
1: License number 10394
2: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदियां ने तां फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो किसे भी उम्र दियां दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे साडे तजुर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन तां जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण ए सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते पासपोर्ट तो लेके हेडशॉट अते परिवार पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करते हां पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड लई कॉल करो 403-947-0060 403-947-0060 जां आओ यूनिट 530-669 सवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी पिक्सल फोटो स्टूडियो जिंदगी दे पलां नूं कैद करदे होए इक फोटो इक वार
3: ग्रोसरी खरीदने लिए हमेशा याद रखो कैलगरी दा मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर
4: ताजियां सब्जियां फल फ्रूट दालां मसाले ते बर्तनां तो इलावा घरां दी वरतों दा हर समान मिलेगा कीमतां कट ते क्वालिटी A1
3: जानिया पछानिया नाम है सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर
4: तुहाडी ग्रोसरी दियां लोड़ां पूरियां करन लई सांझा पंजाब दियां कैलगरी दे विच हन 6 लोकेशनां हफ्ते दे 7 दिन सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 9 बजे तक
3: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर पहली लोकेशन 331-3690 वेस्टमंस ड्राइव
4: दूजी लोकेशन 117-7780 एवेन्यू
3: तीजी लोकेशन 570-6520 फाल्कन रिज बुलेवार्ड
4: चौथी लोकेशन 606 सिटी स्केप स्क्वायर
3: पांचवी लोकेशन 3150-235 रेड एम्बर्स वे
4: छठी लोकेशन 445 कैरिंगटन बुलेवार्ड नॉर्थ वेस्ट कैलगरी
3: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर दियां 6 लोकेशनां दा सांझा फोन नंबर
4: 403-835 बाय बाय ट्रक चाड़न लई थब्बा नोटां दा लगदा है होर ता होर ट्रकां दी इंश्योरेंस बंदे दा धुआं कढ दिंदी है ते दुहाइयां फिर बंदा पौंदा है
2: सुनो सुनो सुनो ट्रकिंग कंपनियां दे मालक ते ट्रक ओनर जरा ध्यान नाल सुनो ट्रकां दी सस्ती इंश्योरेंस दा हल हुण आ गया ट्रकां वास्ते इंश्योरेंस दे रेट लैण लई सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा नाल 587-832-1208 ते संपर्क करो तजुर्बेकार इंश्योरेंस ब्रोकर मानस पहुजा ते उन्हां दी टीम प्रोफेशनल सेवावां दिंदे हन बेस्ट ट्रक इंश्योरेंस रेट्स लई याद रखो सोनिक इंश्योरेंस 587-832-1208
5: कैलगरी वासियों की तुसी लंबी लाइना अते डॉक्टर दिया वेटिंग लिस्ट तो परेशान हो हुन फिकर छड्डो क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया है सेहत दा असली पहरेदार ओएसएस स्माइल मेडिकल सनरिज मॉल दे नाल सुपर स्टोर वाले प्लाजा विच स्थित इस क्लिनिक विच तुहाडी अपनी भाषा बोलण वाले मेल अते फीमेल डॉक्टर्स हर कदम ते तुहाडे नाल हन चाहे गल होवे बच्चियां दी या फिर बुजुर्गां दी इत्थे सारेयां लई सुविधावां मौजूद हन अपॉइंटमेंट नहीं बनी कोई चक्कर ही नहीं सिद्धे चले आओ इत्थे वॉक इन विच खुला स्वागत है नवे पेशेंट्स दा वी निग्गा वेलकम फैमिली केयर तो लेके मेडिकल चेकअप अते क्रोनिक बीमारियां दे इलाज तक सब कुछ इक्को छत हेठ असी हफ्ते दे 6 दिन खुले आ ते ओ वी देर शाम तक ता देर किस गल दी अज ही डायल करो 587-617-4696 587-617-4696 ओएसएस स्माइल मेडिकल तुहाडी सेहत साडी जिम्मेवारी 587-617-4696
0: जी हाँ मोटर कार का तो मालूम नहीं लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुंचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज वो रेजिडेंशियल हो कमर्शियल हो प्राइवेट हो फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर मयंक भटनागर जी 647-702-2023-647-702-VDEI 702-VDEI

0: यही सिखाता है, हमें यही सिखाता है कि हमें हमेशा अपने पेरेंट्स का साथ देना है, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना है। तो ऐसी एक संस्था है आशा सर्कल एसोसिएशन, जो कि लेके आई है एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम, एक बहुत ही बढ़िया थॉट, जो कि हमारे सीनियर्स को रख सकता है फिट और रख सकता है सेहतमंद। उसके लिए वो लोग एक रन करने जा रहे हैं, 5 किलोमीटर रन या वॉक स्ट्रॉन्गर टुगेदर, और ये एक बहुत ही अमेजिंग इवेंट होने वाला है जो कि अक्टूबर 4 को होने जा रहा है प्रेरी विंड्स पार्क में। और इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं आज हमारे प्रोग्राम में। आइए उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं कि ये क्या है और एग्जैक्टली क्या होने वाला है इस इवेंट के अंदर। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा सनी जी का, रविंदर जी का और समीर रंधावा जी का। भाई बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम।
1: थैंक यू।
0: So, शुरुआत करते हैं सनी जी से। सनी जी एक बार फिर से स्वागत, और मैं आपसे 2 मिनट चाहूंगा, आप ये थोड़ा सा बताएं कि व्हाट एग्जैक्टली इज आशा सर्कल एसोसिएशन और ये किस तरह से काम कर रही है फॉर सीनियर्स।
1: थैंक यू। आपको हमारा हमको यहाँ पे लेके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम टीम बना रहे हैं और हम बहुत खुश हैं कि हमारे साथ जैसे जो लोग जुड़ रहे हैं वो इतना काम ऑलरेडी हमारी कम्युनिटी के अंदर करते हैं। तो इससे हमको भी बहुत खुशी होती है और हम चाहते हैं कि और लोग हमारे को सुने और ये जो काम हो रहा है उसके अंदर टेक पार्ट करें, सबको ज्वाइन करें। जो आशा सर्कल है वो ये है कि जैसे हम चाहते हैं कि हम लोगों को होप दें, राइट। लेकिन मैं एक डॉक्टर हूँ, तो जब हमने ये शब्द शुरू करा तो मैंने एक गोल बनाया था कि हमको कुछ करना चाहिए जिससे हम अपनी कम्युनिटी के अंदर अपनी सेहत को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं।
0: जी,
1: सबसे बड़ा चीज जो मैंने बार बार पहले भी बोला हुआ रेडियो पे कि हमारे रेट्स, हमारी कम्युनिटी, साउथ एशियन कम्युनिटी की जो रेट्स हैं कनाडा के अंदर, नॉट जस्ट कैलगरी, हमारे पास सबसे ज्यादा डायबिटीज है, सबसे ज्यादा हार्ट अटैक्स है, सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, राइट। तो हम और हमारे लोग अब 10 साल पहले मर रहे हैं बाकी लोगों से हार्ट अटैक्स के साथ। मतलब जब आप न्यूज में भी सुनते हो कि कुछ हुआ है तो यूजली आपको जब नाम दिखता है तो आपको दिखता है कि हाँ ये तो एक हमारा ही बंदा है। एंड इसको चेंज करने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। अगर आप देखो स्टेटिस्टिक्स ये भी बोलते हैं कि हम सबसे कम एक्सरसाइज कर रहे हैं रिक्रिएशनल के लिए, स्पेशली जब हम ओल्डर बन रहे हैं। बच्चे कर रहे हैं लेकिन जैसे हमारी एज होती है हम छोड़ रहे हैं। हम क्यों छोड़ रहे हैं? और हमको अगर अपनी सेहत को नहीं ठीक रखना है तो फिर ये जो आउटकम्स आ रहे हैं वो हम देखते रहेंगे। इसलिए हमने ये काम करा है कि नहीं, हम चाहते हैं कि सबको ये वापस से याद हो कि जो हमारे कल्चर में है, जो हमारा पूरा हिस्ट्री है, वो ये है कि हम हमेशा एक्टिव रहे। हम फार्मरिंग से आए, राइट। हम हमेशा बहुत एक्टिव रहते थे। जब हम जॉब्स चेंज हुए, सिटीज में आए या हम कनाडा में आए, हमारी जो आदतें हैं वो चेंज हो, और हमारे को वो आदत वापस से रिवर्स करनी है जैसे हमारी सेहत बेटर हो सके। हमारे पास मेडिकली ये भी बहुत डाटा है कि जब अगर आप देखो कोई इंडियन बोर्न और अगर आप कोई देखो कोई गोरा बोर्न, जब वो बच्चे होते हैं 7 पाउंड के, दोनों का सेम वेट है, लेकिन अगर जब आप उनकी MRI रिपोर्ट्स देखते हो तो जो विसरल फैट, जो फैट आपके ऑर्गन्स के अराउंड होता है, जो आपके ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो जो हमारे बच्चे हैं उनके अंदर ज्यादा है। वो हम सीधा बर्थ से है, हमारे जेनेटिक्स में कुछ है, और तो हमारे जो रिस्क हैं वो बाकी लोगों से ज्यादा है। उसका मतलब है कि हमारे को अपनी सेहत और भी ठीक करनी है, उसके ऊपर और भी ध्यान करना है। एंड तो हमने बस ये बोला कि देखो हम अपना खाना नहीं छोड़ेंगे, वो पता है वो बहुत हार्ड है और उसको चेंज करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम अपनी एक्सरसाइज बढ़ा सकते हैं उससे जो बेनिफिट्स आएंगे एटलीस्ट हम उसको तो देख सकते हैं। इस वजह से हम आशा सर्कल के अंदर ये काम कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हम अवेयरनेस लाए। हमने जुलाई में जो 90 डेज चैलेंज शुरू करा था कि आप वॉक करो, ऐप बनाई थी जिसके अंदर हमने लोगों को भर्ती कराया, बोला कि आप बस अपना ये देखो कि आप अपने कंसिस्टेंटली वॉक कर सकते हो, आप बस अपना गोल बना दो 1,000 steps, 5,000 steps, 10,000, जो भी आपका है, लेकिन आप उसको करते रहो। और अगर आप अपना कंसिस्टेंटली कर रहे हो, आप अपनी हैबिट्स चेंज कर रहे हो, आप शायद खुद बोलोगे कि अब मेरे को थोड़ा और चलना है, मेरे को और एक्सरसाइज करनी है। उसको हमने शुरू करा था और ये हम फिनाली कर रहे हैं उसका कि हम सब लोग मिलके, सारे लोग कम्युनिटी से आओ। अगर आप ऐप पे नहीं थे दैट्स ओके, आप तब भी आओ, सबको सपोर्ट करो कि ये हमारी कम्युनिटी है, हमको स्ट्रांग अपने साथ बनना है, राइट। हम सब स्ट्रांग होने चाहिए, हम सब सेहतमंद होने चाहिए, इसलिए हमने इसको नाम भी स्ट्रांगर टुगेदर रखा है। और हम चाहते हैं कि सब लोग जुड़े और आए, रन करें या वॉक करें और हमारे को दिखा

0: their body or themselves. Ek age tak. Jad age to baad jad godiyan dard hon lag janda hai taan samajh janda hai ki appa kuch galti kar gaya. I understand ke jede job vi karde na sari bhai utthe chobi bhai utthe koi care nahi karda. To si shaam nu thakke tutte ghar pahunche. I totally agree ke nahi hundi himmat ke yaar tusi jaake bahar chale jao kuch kar lo gym chale jao. Lekin that is where we have to be strong. ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਚਾਹੇ ਸਰਦੀ ਹੋਏ ਕੁਛ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਪਲੱਸ 15 ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਰਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਵਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਰਟਸ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਈਵਨ ਇਫ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ 20 ਮਿੰਟ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ ਬਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਵੇ ਟੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਯੋਰਸੈਲਫ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਦੀ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਆਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਕੁਡ ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਕੇਅਰ ਆਫ ਇਟ ਐਟ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਰੱਬ ਸਭ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਸਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹਮਾਰੀ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਹੈ ਉਹ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ Because we are not taking care of ourselves. So Asha Circle aapke liye yahi ek event leke aaye hain aisi hi soch leke aaye hain jahan par aap is soch ko badal sakte ho aur apne aap ko dobara se us maqam pe leke aa sakte ho ki hum kabhi jawan the lekin aap abhi bhi jawan hain aapke andar abhi bhi wo jazba hai ki aap apne aap ko dobara se proper way se ek टेक्निकल वे से जिसमें यू नो डॉक्टर्स भी हैं जो आपकी हेल्प कर रहे हैं आपको ट्रैक रखने में आपकी हेल्प कर रहे हैं कि आप कितने स्टेप्स चलते हैं आपको कितना स्टेप्स चलना चाहिए आपकी बॉडी क्या अलाउ करती है क्या नहीं अलाउ करती है तो आपके साथ पूरा सपोर्ट सिस्टम है सो आपको ये जो आशा सर्कल का इनिशिएटिव है उसका जरूर फायदा उठाना चाहिए और बड़ी तादाद में आकर इस इवेंट में हिस्सा लेना चाहिए जैसे सनी जी ने कहा कि चाहे आपने वो ऐप डाउनलोड नहीं किया या आप उसका हिस्सा नहीं बने लेकिन आप उस इवेंट में आए और उस इवेंट में आने से आपको और जानकारी मिलेगी और आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि कैसे मूविंग फॉरवर्ड आप उसको ठीक कर सकते हैं जो बीत गया वो बात गई दोस्तों उसको अब रोने से कोई फायदा नहीं या उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं वी हैव टू सी कि हम आने वाले टाइम में इसको कैसे ठीक कर सकते हैं अपनी बॉडीज को कैसे ठीक कर सकते हैं जैसे समीप भाजी ने कहा कि वो अब उन्होंने 2 घंटा ज्यादा जिम में शुरू कर दिया सो देयर वाज अ टाइम ही रियलाइज्ड कि यार अब बहुत हो गया अब मेरे को आगे बढ़ के इसको ठीक करना है सो आपके सब में वो काबिलियत है आपके सब में वो हिम्मत है वो सोच है कि एटलीस्ट हम अपने बारे में अब सोचना थोड़ा शुरू करें और वो अपना बारे में ये नहीं कि यू हैव टू बी इंडिविजुअलिस्टिक या आपको कुछ मीन बनना है बट अपनी बॉडी को लेकर अपनी सेहत को लेकर और आशा सर्कल आपके लिए वही एक इन अपॉर्चुनिटी लेकर आया है सनी जी आप हमारे पास टाइम बहुत कम है तो मैं बस ये चाहूंगा कि आप थोड़े शब्दों में बताएं कि कैसे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसके अंदर और विच इज द प्लेस दे हैव टू बी डेट एंड टाइमिंग प्लीज
1: तो अक्टूबर 4th प्रेरीवंस पार्क में हमने ये पूरा बनाया है हमने ये ऐसे ही बनाया जैसे आप कभी कोई भी 5K रेस में जाओ उसके अंदर आपको पूरा ट्रैक मिलेगा हम उसके अंदर आपको रनिंग कराएंगे उसके एंड में फिनिश लाइन होगी आपको मेडल भी मिलेंगे हम वहां पे पूरा स्टेज भी होगा म्यूजिक भी होगा हम पूरा गैदरिंग कर रहे हैं उसके लिए आप उसके लिए रजिस्टर करिए वो सीधा हमारी वेबसाइट भी है ashacircle.com उसके थ्रू आप अगर 5K पेज के ऊपर क्लिक करोगे तो उसके अंदर लिंक होगा ये लिंक आपको रेस रोस्टर वेबसाइट जो है जिसके अंदर अगर आप कैलोरी मैराथन या कुछ भी करते हो तो वो सब उन्हीं के थ्रू होता है जहां पे आप रजिस्टर करते हैं एंड अगर आप उस पर नहीं कर पाए और आप आना चाहते हैं तो हम ऑन साइट रजिस्ट्रेशन भी करेंगे रजिस्ट्रेशन की फी बस $5 है और ये $5 बस कमिटमेंट है इस कमिटमेंट से जो हम पैसा जोड़ भी रहे हैं वो एक्चुअली जाएगा जैसे हम फ्री योगा क्लासेस शुरू कर सकें हमारी कम्युनिटी के लिए हम देख रहे हैं जगह और शायद नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट एंड शायद एयरट्री के अंदर हम फ्री योगा क्लास लाने की कोशिश कर रहे हैं उस वजह से ये फंडिंग होगी
0: क्या बात है भाजी बिफोर वी एंड थोड़े बोलो फ्यू वर्ड्स
2: ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਕੈਲਗਰੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਏਡਰੀ ਚੈਸਟ ਮੇਰ ਕੋਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 5K ਰਨ ਵਾਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਿਸਪੇਟ ਕਰੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂ